0: भुला भुला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया
1: बह के कदम कुछ हमें बिसन
2: Thank you, Nitin, for requesting that song, and I hope.